सम है एक्स का एफ एन की इन अंतहीन को अह कमेंटिंग की सी कर हो ये सम है तो बने या हो जाओ सी मोशन इश बोली जी कि ते को कर है बोली जी अंजी बुती से ने जब की तरह से बटे मत मत सुन लो कि तो ये तो बता कि आई कर को कर बटे तो कर के के के ते आपको बोली जी ते को Stephen Ju, Govan Raju, Mere Pati, Special, Masuk Ini Dikono, Baiklah, Dalam Bulan, Dekki Parwin, Takono, Desi Kono Guham, Social Media Maskapai Yang Meta, Angkat yang gak uji cinta hati, Facebook, Twitter, Instagram, Kidam, Kepo Guham, Professor University di Kujibun Tawang, Sidi